पार्थिवास एफएम समय सूचक यो पार्थिवास एफएम को समय हो अहिले दिउँसो एक बज्यो।

0: ओ मेरो फुलीवाली, अब के छ त पिक्चर?
1: के पिक्चर? को फुलीवाली? मसु बहिनी।
0: बहिनी त साली हो तिमी, त अनि मेरो फुलीवाली।